रव रया रम के जी सब में रव रया बस गई सब रात बराई जब दे साल संग को माई ना को बहरी नहीं दिखाना सगल संग हम गा बने आई जो बाब की नो दो वरमान होए मस मस साधु के भाई सामने रव रया रव रया रव रया हाँ बाब ये कहे सब में रव रया

लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सदल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया।

जिसके मस्तक हाथ गुर तरै, सो दास अंदेसा काहे करै। जन्म मरण की चुकी कान, पूरे गुर ऊपर करवाण, पूरे गुर ऊपर।

0: धर्मगुरु रामदास, धर्मगुरु रामदास, मैं ठीक हो गया, मेरा रूप तो पड़ गया, मैं चल फिर सकता। पंजा जी ने एक तेरे से दुख दफा लाए जरा अज मैं नवे जीवन मिले। रजनी रजनी मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो पड़ गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन है तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैंने पछाने नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं ऐसी छिपकी गई सी, किसी ने किसी ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैंने चंपूर नहीं लैके, तुसी मैंने संजी के दर्शन कराए, तुसी मैंने गोलवाल लैके, तुसी मैंने छबीर वाले बाबे तो पानी पिया, मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है पर थोड़ा रोग के लिए ठीक हो या?
0: ते सारी करामात ऐसे चलती है, थोड़े जान तो बना मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई कागो हंस करे, तो मैं रिड़ता रिड़ता ऐ छपड़ी के कंडे ते आ गया और पानी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन।
1: तुसी तुसी कैनन भर के पानी कैसे ना? हाँ। केरे हाथ में

0: हे परमात्मा, तुम्हारी पुकार सुन ले, माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मभारी, धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

देवते ते शहीद सिंह जदों भी तेरा समा पूरा होगा ओ लियानगे ते मेरे को नहीं लियानगे गुरु नानक दे दरबार जाएगी सदीका को सतनाम ये गलती ना तेनु इत्थे ले आए ने मैनू कोई सेवा होवे दस मैं शरीर विच तेनु वापस भेजना है ये सच मैं सोची पै गया कि धर्मराज भी एक महापुरुषा दे लांगरी दी माता के हाथ जोड़दा होगा पढ़ जो कई बैठे होंगे कट्टड़ एक सुना।

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा है, रात पैण लगती है, तो वृक्ष ते आके कट्ठे हो जांदे हैं। इसे तरह यह संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा परमदा अपने कर्मा दा खटिया खांदा खांदा ए वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा है मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया है, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलणे बनाए हुंदे हन। पंखियां ने ओ आके बैंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह ए मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा, मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया। जिन्हां ने तां भाई इत्थे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इत्थे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दियां पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मां दा खटिया खान लई उठ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड के तुर जांदा। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन किस नाल की चै दोस्ती, सब जग चलन हार किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा है कि राजा सुखी होवे, पर ओ तां सब तो दुखी है। हो सकदा महल माड़ियां विच रहण नाल कोई सुख प्राप्त होवे, ओ भी नहीं है। हो सकदा चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहनन नाल सुख मिल जाए, ओ भी नहीं है। क्योंकि सुख तां हरि दे नाम विच है, सुख तां परमेश्वर दी भगती विच है। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन सब जग चलन हा।